0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्दरा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामा? अब पंडित काल कोयल के वेलिये उपाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मातरान का எல்லாம் மாச சம்பளம் தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா.
0: ஓ, கோண
2: யாரு அவரா? அவரு
3: நல்லாரு நல்லாரு. நான் மடப்படி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
2: வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா, வேணு சாஸ்திரி.
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன். எப்பா திருநாகர்சே,
1: ஜன்மதின் तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं।
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
4: मुस्कान।
3: मुस्कान, बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
5: तारीस पूसम।
3: ओ, पूसम, वेरी गुड स्टार। शील बिकम वेरी बिग हीरोइन, तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी।
5: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिनाथ टेंपल है।
5: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
5: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: எல்லா மூலியும் பேசுறா?
3: யார் இவாளா? இவங்க வடநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஏ, மந்திர கா படா பண்டிட ஹே, வேணு சாஸ்திரி ஜி.
0: வேணு சாஸ்திரி கா?
3: हां जी।
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है।
1: बेल बॉय?
3: हां जी।
1: ये तो बैड बॉय है।
6: इन्हें पतिया वाले तो சொல்லி இருக்காங்க।
3: आइए पूजा करेंगे।
2: बैड बॉय है? என்ன
6: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பயக்க